0: ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଶେଷ ହେବା ମାନେ ହାରିଯିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ଯାହାକୁ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्रैम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार

0: किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनुले हिंदी संवाद रिले करी प्रचार करू आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र।

नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। ओडिशार आध्यात्मिक चेतनार केन्द्रबिंदु हेउछंती प्रभु श्री जगन्नाथ। ओडिया माने स्नेहरे तांको जगा कालिया बोली डाकंती। भक्तटी जहा डाकिले भी तांको सब भल लगे। भावर ठाकुर से मनुआ ठाकुर तांकरी नाम नै तांकरी नाम को स्मरण करी सकाळर प्रथम मुहूर्त को आरंभ करिबा। आजिर ए नुआ सकाळ तांकरी करुणारु समस्तंक पाई शुभमय हेउ मंगलमय हेउ। कारण से ही आमर अरूप, से ही आमर स्वरूप, से ही आमर देवता, से ही आमर ठाकुर।

प्रभु जगन्नाथंकर से नामरे ही अमृत भरी रहिछि सेते पाइं त तांकरी नाम को जप कले तांकरी नाम तुंडरे धरिले जीवन धन्य हे जाए पवित्रमय हे जाए ए आत्मा तांको ढाकी देले से ओ बोली करंते तांको आखिरे आखि मिसी गले लोह झरी पड़े भक्त आखिरु कारण भक्त साथीरे से भाव भक्ति रे बंधा से भावर ठाकुर करुणार ठाकुर भक्तंकर ठाकुर से भाव बिनदिया कालिया ठाकुर।

नर ओ नारायण ऋषि रूपरे बद्रिकाश्रमरे कठोर तपस्या कले। तप भांगिबाकु इंद्र उर्वशीको पठाई विफल हेले। ध्रुवर तपस्यारे संतुष्ट होइ ताकु ध्रुव पद देले। पृथु रूपरे लोकंकु अन्न संकटरु रखिले। नाभि ओ सुदेवीकठारु ऋषभ, यज्ञरु हयग्रीव एवं मत्स्य रूपे प्रलय जलरु वेद उद्धार कले। समुद्र मंथन बेले कूर्म ओ दानव हिरण्यकशिपुकु मारिबाकु नरसिंह रूप धारण कले। गजकु कुम्भीर कबळरु रखिले। बामन रूपरे तीनि पाद भूमि नेबा आळरे त्रिपुर जिणिले। नारद मध्य तांकरि अंशरे जात बोली ब्रह्मा कहिले।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें।

0: रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आम राज्य में स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो एथिपाई 30 मे 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी प्रत्येक घर को घर जा प्रति निर्वाचकों दुईट परिगणना फर्म देबे। फर्म गुडी को voters.eci.gov.in वेबसाइट रु डाउनलोड करिपारिबे। फर्म दुईट पूरण करिबा परे एहाको बीएलओंको निकटरे दाखल करन्तु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करन्तु।
2: श्रोताबंधु वर्तमान आसंतु सुनिबा आंचलिक संवाद।
3: नमस्कार, आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पूर्वाह्न 11:00 समय आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम देशवासी भाव विनिमय करेंगे। कार्यक्रम 134वां संस्करण आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल आप कार्यक्रम उपलब्ध होगा। आकाशवाणी डीडी न्यूज पीएमओ और सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल कार्यक्रम सीधा प्रसारण हिंदी भाषा प्रसारण पर आकाशवाणी कार्यक्रम आंचलिक भाषातरण प्रसारित हो रात 8:00 आंचलिक भाषातरण पुनः प्रसारण। राज्य में स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया अधीन गतकाल प्रथम दिन में 269166 जन को परिगणना फर्म बंटन कर बूथ स्तरीय अधिकारी घर को घर बुली भोटर तथ्य जांच कर इच्छुक भोटर निर्वाचन कमिशन वेबसाइट voters.eci.gov.in फर्म डाउनलोड कर पूरण करने बूथ स्तरीय अधिकारी हस्तांतर करेंगे। एक स्वच्छ एवं सठिक भोटर तालिका प्रस्तुति नहीं सहयोग प्रदान करिबाकु निर्वाचन कमिशन जनसाधारण को अनुरोध करिछंती। महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल रे दार्ज होइथिबा प्रसंगगुडिक मध्यरु 12टी रे उभय ओडिसा एवं छत्तीसगढ़ सहमत होइछंती। एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य संपर्क रे सूचना दे कहिछंती सुनानी पई उभय राज्य पक्षरु 15टी प्रसंग दाखल करा जाइथिला। ट्रिब्यूनल रे ही प्रसंगर परवर्ती सुनानी आसंता 6 तारीख को धार्य करा जाइथिबा श्री आचार्य कहिछंती। जाजपुर जिले में खरीफ और रबी धान संग्रह नहीं खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र समीक्षा करिछंती। बैठक में साधारण बंटन व्यवस्था खाद्य सुरक्षा योजना ईकेवाईसी पदक्षेप आदि संपर्क में मंत्री को अवगत कराई। जिलूर 1,15,500 क्विंटाल रबी धान संग्रह लक्ष्य रखी। नुआपड़ा जिले में निर्मित होगा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज पर जमी चिन्हट प्रक्रिया स्थिति नहीं एक समीक्षा बैठक गतकाल अनुष्ठित हो जिलापा मधुसूदन दास अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में आयुष अधीनस्थ सरकारी होम्योपैथी और आयुर्वेद चिकित्सालयगुड़िक सेवा प्रदान और उन्नयनमूलक पदक्षेपर समीक्षा कर। ओडिशा जुडिशियल सर्विस ओजेएस प्रिलिम परीक्षा घुंचाई दी जाएगी। नूतन तारीख धार्य पर सूचना प्रदान ओडिशा लोकसेवा आयोग ओपीएससी पक्ष पूर्व परीक्षा जुलाई मस 5 तारीख दिन धार्य कर ओपीएससी पक्ष संक्रांत विज्ञप्ति गतका प्रकाश पाई। एथसह आवेदन प्रक्रिया समयसीमा वृद्धि कर। आगामी रथयात्रा पर रेलवाई प्रस्तुति और परिचालना संपर्कित एक समीक्षा बैठक पूरी सर्किट हाउस अनुष्ठित हो जिलापा दिव्यज्योति परिडा अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में रथयात्रा समय श्रद्धालु गमनागमन तथा अन्य आनुषंगिक व्यवस्था नहीं विस्तृत आलोचना जारी रही प्रकल्प को रथयात्रा पूर्व शेष करने प्रस्तुति उपर बैठक रेलवाई पक्ष सूचना प्रदान। नवरंगपुर जिला उमरकोट वनखंड अंतर्गत नायकगुड़ा अंचल में वन विभाग पक्ष 22टी कईछ को जबत कर कईछगुड़ी को बिक्री चालाण विभाग पक्ष चढ़ाऊ कर। भद्रक जिला धामरा अंतर्गत 5टी बहुमुखी बात्या आश्रयस्थली उपयोग नहीं एक मकड्रिल गतकाल अनुष्ठित हो प्राकृतिक विपर्यय समय साधारण लोक सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करने नहीं मकड्रिल अनुष्ठित होता। तमाखु सेवन एवं स्वास्थ्य प्रति यार कुप्रभाव संबंध में जनसचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज विश्व तमाखु निरोध दिवस पालन विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्ष 1988 मसीह पालन कर दिवस चलित बर्ष बार्ता रही निशाद्रव्य तमाखु अभ्यास को प्रतिहत करने आकर्षण परदा को दूरे देवा तमाखुरे 7000

0: जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता बंधु आपण माने ट्यून करी छंदे 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक। आपणको कोयल अछि आपण मानका साथी रे आजर ए नुवा सकाळ आउ सी भी रविवार रे सकाळ ए सकाळटी आपणको पई खूब खुशी रे भरि जाउ ताजापण रे भरि जाउ सेई चेष्टा करू छी मु सकाळ सकाळ। तबे आज हेछि मे मासर शेष दिन माने 31टी दिन रो हस खुशी संघर्ष आउ सफलता को सांगरे नै ए मे मासटी विदाय नै छी। आगको आसु छी नुवा मास गुटी माने जून मास ताको आमे पूर्ण नुवा आशा नुवा स्वप्न आउ नुवा संभावना सहित स्वागत करबा। तबे आजर ए दिनटी आमको गोटे कथा तो निश्चय सिखौछि जे समय बदले किंतु सफलता और संघर्ष कहानी सबुबले प्रेरणा दे थाए आम मानंकु। तेबे ए प्रेरणा सहित ए नुआ आशा आ नुआ उत्साह सहित नुआ स्वप्नर संभावना सहित आजर ए नुआ दिनकु आमे समस्ते स्वागत करबा। सकाळर टाइम अछि रविवार अछि लेजी तो आपनको लागथिबो किंतु टिके उठंतु आ सकाळर जो मधुरता अछि ना ताजापण अछि ना ताको फील करंतु ताको अनुभव करंतु देखिबे आपनको मन खुशी रे भरि जीवो।

ची आईपीएल मैच सो आज बहुत ही जबरदस्त घमाघोट लड़े भी अच्छी सो आज जेहेतु ग्रांड फिनाले अच्छी आपण माने निहाती ताकु देखिया पई कि मध्य अपेक्षा करथिबे आज आरसीबी रो बैटिंग अच्छी आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एवं गुजरात टाइटन्स मध्य रे फाइनल मैच खेला जिवो ता पई मध्य आपण पूरा प्रिपेयर हेकि थिबे मु भाबुची सो एंजॉय करंतु आज संडे को आ ता सहित किछि लवली ट्रैक को।

0: শ্রোতা বন্ধু বর্তমান সকাল আটটা বাজিবাকু যাচ্ছে শুনিপারিবে হিন্দিরে সম্বাদ পরে পরে ইংরাজিরে সম্বাদ রিলে করি প্রচার করুছু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্ররু
1: सुनिए क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है माने बिजली बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं तो बैठे क्यों हो अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर
3: हर घर सूर्य घर
4: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया नया शुल्क कल से लागू मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई
4: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की उनके साथ कई मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की बैठक का उद्घाटन

0: करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा इनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी

0: विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी।

0: खेल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defense Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पुस्तक आम पाई ज्ञानर भंडार जीवन पथरे से अमूल्य उपहार पृष्ठा पृष्ठारे लुचिछि केते जे कथा पढ़िले मिले नुआ आशार बार्ता इतिहास हेउ विज्ञान हेउ साहित्यर हेउ धन बही दिए आमको ज्ञानर चिन्ह श्रोता बंधु आपण माने ट्यून करिसेंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक तिल से तिल तक आपण का कोयल हाजर आपण मानक पाखरे वर्तमान स्टूडियो घड़ी समय 8:32 आमर मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम को आगे नवा आम आज मॉर्निंग मेलोडी रे बही केमिति आम पाई ज्ञानर भंडार बही केमिति आम पाई गोटे अमूल्य उपहार से विषय आम कथा हवा आपण मानक भी तो बही पढ़ाक भल लगे ना तो मत भी बही पढ़ाक भल लगे मत बही कलेक्ट करबा को भी बहुत भल लगे तो ये सब विषय आज कथबार्ता चर्चा आमर जारी रहिबो सकाळर चा कप सहित तो चलंतु आज सफर को आरंभ करबा गडे लवली ट्रैक रु ए गीतले समस्तंग पाए आपण मानक पाए डेडिकेटेड मो तरफ रु

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोता बंधु ट्यून करी आपण माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो दिल से दिल तक रे आपण को कोयला आपण मान का साथ रे अछि आ बही को आज हमें भलो केमिति पाउ छे से विषय रे कथा अछि। बही हम पई सबो ठारो नियारा सत कहली ना बंधु, बहुत किछि इन्फॉर्मेशन हमें बही रु ही पाई थाउ। आ गोटी बही को साहित्य रखिले वर्ष वर्ष युग युग पर्यंत हमें सेथिरु नॉलेज पाई ही थाउ, ज्ञान हमें सबो बळे था। उसे विज्ञान हो, इतिहास हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, बा नीति शिक्षा हो, विभिन्न विषय ज्ञान बही रे ही सब बले संचित होकर रही था। क्या सब पाठ बही पढ़ा भल लगे, क्या नीति शिक्षा बही पढ़ा भल लगे, क्या गप बही पढ़ा भल लगे, तो क्या कविता उपन्यास ये सब पढ़ा भल लगे, कि प्रत्येक बही रे लुचि रही अनेक ज्ञान आम समस्त आईसब ज्ञान आही आमर कल्पना शक्ति को तो बढ़े थाए, ता सहित आम भाषा आउ चिंता करिबार क्षमता को मध्य बढ़े थाए। हाँ आजिकल सब डिजिटलाइजेशन हो गला, किंतु आज भी बही गुरुत्व कमी आ बही जगह केही भी नहीं पारे। आम जिते आग को बढ़ी जाऊ, आम जिते मॉडर्न हो जाऊ, जिते एआई द्वारा कम करूना कहीं बही गुरुत्व आम पाई से रही आगर थिला एवे अच्छे सब दिन भी रही।

श्रोता बंधु बर्तमान अच्छी मो पाखे आज परवर्त मेसेज टी ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटेक दिल से दिल तक प्रशांत कुमार बिसोई श्रीकोरुआन गोपालपुर कटक रु लिखी शुणापाई चाहती अक्षय तृतीया चलचित्र आम राजा बाबू घर खाना आस किए खाइब आम राजा बाबू घर खाना

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किट बैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किट बैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल

0: दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेष कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेष जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है। मैं 200 मीटर और 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत

0: थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
1: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है

वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना,

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई।

उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं

ऐसे का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज

0: के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ଉଦ୍ବୋଧନ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ଉଦ୍ବୋଧନର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର।
3: ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ

वेलकम बैक टू कुचन म्यूजिकली होर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक दैच से दिल तकरे रेडियो हम सबर सागर अच्छा आपन को सहित सो चलची किछ कथा किछ गीता आउ किछ कथा किछ गीतरे आज हमे कथा होचे मन खोजे पुराना दिन फ्रेंड्स जीवन रो सबठरो सुंदर मुहूर्त सेगुड़िक जेतबेले आमे जानि नथाउ जे सेगुड़िक ही सबठरो सुंदर छोटबेले आमे बड़ हेबाकु चाहुथिले आज बड़ होई पुणि छोटबेले को फेरि आसीबाकु चाहुचे सेई पुरुणा सांग माने सेई श्रेणी गृह सेई खातार शेष पृष्ठरे लेखा अनेक स्वप्न सबुकिछि आज भी स्मृतिर आलबम रे सजा होई रहिछि। हाँ फ्रेंड्स पुरुणा दिन फेरि आसीब नाही किंतु सेई दिनर स्मृति आम मन को आज भी खुशी दे पारे सेतिपई व्यस्त जीवन रु टिके समय बाहर करंतु पुरुणा सांग को फोन करंतु पुरुणा फोटो देखंतु आउ स्मृतिर सेई सुनेली पृष्ठा उडिक पुणि थरे ओलटंतु कारण केबे केबे आगो को बढ़िया पई पछर सुंदर मुहूर्त उडिक मन पकेबे मध्य निहाती जरूरी।

वेलकम बैक चुन को चुन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर छ आपन को सहित सो चलची किछ कथा किछ गीत फ्रेंड्स कुआ जाए मनुष्य जेते आग को बढ़े सेते अधिक पछ को चाहिँ देखे कारण पछरे रही जाए कि अमूल्य स्मृति किसी अगुआ कहानी आ कि मुहूर्त जहां आज भी हृदय कोणे सजा हो रही।

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ ବୋକାଡେକ୍ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट

0: ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that three rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
0: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi ek mahatvapurn khoj hui hai. यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशी कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाए नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दर लाभ उठाई पारिबे, जहाद्वारा एही जानगुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

वेलकम बैक टू उनका चंद म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दैट्स अदल तक रे रेडियो हम सबर सागर छ आपन को सहित सो चलची आज चर्चा रे आज चर्चा रे मु आपन गोटे ब्यूटीफुल क्वेश्चन करथली कि अजणा जगह को जदि आपन एका जाई छंती केबे तबे आपन गरा अनुभूति शेयर करबाकू मो पाखे प्रथम मेसेज टी से पहुंच जाई छंती मेसेज टी कर छंती हिमांशु भूषण भुवनेश्वर रु से लिखिछंती कि भाई जय जगन्नाथ केमिति अछंदी मु तो एकदम बढ़िया अछि हिमांशु बाबू टॉपिक विषय से ये कहिछंती कि मोर फास्ट जर्नी थिला मु बस रे भुवनेश्वर रु बलांगीर जाउथिली किंतु गाड़ी रे मोर पॉकेट मार हो जाइथिला।

0: मजबूत करिबा, रणनीतिक विश्वास को सुदृढ़ करिबा, सहयोग वृद्धि, भारत प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थिरता एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करिबा आदि विभिन्न क्षेत्र में सहभागितार नूतन मार्ग उन्मोचन करने को बैठक में आलोचना होबार आशा करा जाउछि। सरकार कपा उपरे आमदानी सीमा शुल्क अस्थायी भाव छाड़ कर अक्टोबर 31 तारीख पर्यंत समय सीमा बलबत्तर रखे। केन्द्र बयन मंत्रालय देखा सूचना अनुजाई कपा चाषी स्वार्थ एवं कपा मूल्य श्रृंखला को विचार करपत्ति ग्रहण कर। आईपीएल क्रिकेट चलित संस्करण में आज फाइनल मैच अनुष्ठित हो। अहमदाबाद नरेन्द्र मोदी स्टेडियम गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मध्य मैच अनुष्ठित हो। संध्या 7:30 ग्रीष्म प्रकोपरू रक्षा पाइबा जारी निर्देशावली पालन करने को परामर्श दे प्रधानमंत्री। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में देशर अमूल्य ऐतिह्यस्थलीगुड़िकर संरक्षण उपर दे गुरुत्व। प्रधानमंत्री सूर्यघर निःशुल्क बिजुली योजना अधीन गत शुक्रवार रेकर्ड संख्यक छात उपर सौर प्रकल्प स्थापन। भारत 27वां नौसेना मुख्य भाव दायित्व ग्रहण कले आडमिराल कृष्णा स्वामीनाथन। आमेरिका ईरान सह परमाणु चुक्तिर निकटतर हेउछि सूचना दे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एवं आईपीएल क्रिकेट टाइटल हासिल पाई आज गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मध्य फाइनाल मैच। संवाद शेष होगा।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is making all efforts to preserve heritage sites of the country. Highlights return of ancient Chola era copper plates to India during his recent visit to Netherlands. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Prime Minister urges people to stay safe during summer heat, promotes traditional Indian cooling drinks, and lauds farmers for taking indigenous mango varieties to global markets. Chief of Defence Staff Lieutenant General N.S. Raja Subramani says Indian Armed Forces remain committed to protecting country's sovereignty and territorial integrity. Admiral Krishna Swaminathan assumes charge as a new Chief of Naval Staff. U.S. President Donald Trump says United States is close to reaching a nuclear agreement with Iran, warns military action remains an option if negotiations fail. In badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to take on Indonesia in the men's doubles final of Singapore Open today. And in IPL cricket final, Gujarat Titans and Royal Challengers Bengaluru all set for epic title clash in Ahmedabad this evening. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that three rare copper plates have been found there related to Maharishi Bal Arjun of the Pandu Vanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony, ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi has urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: The Prime Minister suggested that people drink different summer drinks such as Aam Panna, buttermilk,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की तीन पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं

0: ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर, पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रूपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों गिरी

0: अनुजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है।

0: दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इतने कार्यक्रम सुनते आकाशवाणी दिल्ली ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। आम परवर्त कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणीपरि विज्ञापन विरती पर।

वेलकम बैक टू क्वेश्चन म्यूजिकल हियर 100.4 आगस फणी एफएम रेन बकाटक दिल से दिल तक रे रेडियो एम सबर सागर छ आपन को सहित सो चलची मो देश आ मो देश रे आज हमें कथा होचे मो माटी रो लोक कला संपर्क रे फ्रेंड्स आम ओडिशा नृत्य सारा विश्व दरबार रे ओडिशार टेक रखिछि आम ओडिशार गोटीपुआ नाच डालखाई नाच छौ नृत्य दासकाटिया हो कि घुमरा नाच हो सतरे मन ओ आत्मारे शांति भरिदिए एइसबु लोककला समाजरे समस्त लोकंकु एकत्रा सूत्ररे बांधि रखिथाए हाँ आम सम्बलपुरी शाढ़ी आम टेराकोटा शिल्प ओ तारकासी कार्य समस्तंकर प्रथम पसंद आम राज्यर बाहर मध्य एसबु कलाकृतिर बेस आदर रहिछि विदेशरु पर्यटक माने आमर लोककला एवं

सारी चीज. सो सुरीला आफ्टरनून. सो फ्रेंड्स, ये संडे रो स्टार्ट बहुत ही लेजी ही था. पूरा होल वीक रा हसल बसल भीतरे आजी को तेही दिनों मिले थाए टिके रेस्ट नवा पाई टिके रिलैक्स करबा पाई कि आजी सोफा उपरे बसी जाइथिबे निजो कान रे हेडफोन दे तो आउ के स्क्रीन आगरे बसी जाइथिबे आउ के निजो रो फेवरेट पार्क रे चला बुला करे हम सहित कनेक्ट हे जाइथिबे. सो जी जोठी भी अच्छी दिल थाम के रखिए एंड हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर ढेर सारा एंटरटेनमेंट, ढेर सारा म्यूजिकल मस्ती एंड ढेर सारा गॉसिप. इमती ही सुनो था तो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक. आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक. सो स्टे ट्यून्ड टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक. आपको था दिल से दिल तक.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून करी छंती 100.4 आकाश बाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। सो चली छी सुरीला आफ्टरनून। फ्रेंड्स, ये वीकेंड आसिले माने संडे आसिले, आउ जेते बेले ए अपरान हो संजो आड़ा को धीरे धीरे मुहाई थाए, सेते बेले सहर रो बाजार गुड़ी को पूरा लाइवली होई उठंदे। सप्ताह सारा रो सौदा किनबाठर आरंभ करी घर पाई पनीपरिया आनिबा पर्यंत सब काम रा एटा ही हे थाए परफेक्ट टाइमिंग। मॉल आउ दुकान गुडी को देखले लोकंकर भीड़ देखले एंती लागे सते जेमती पूरा टाउन रास्ता को अलहै आछि। टिके पॉकेट हल्का हे जाए हेले भी ए टाइम रे ए संडे रे फैमिली सहित बुलिबार खुशी ए भीड़ को पूरा मजेदार बने दी थाए। सो फ्रेंड्स, कोन आपण भी कोनसी मार्केट रे थई कोनसी शॉपिंग कला बेले आमुकु सुनु छेंती की ताले इमती ही आपण को पाखरे पहुंची दुछि किछि धमाकेदार म्यूजिकल ट्रैक्स एंड एन्जॉय करथन आमुकु ओनली एंड ओनली आपण को फेवरेट म्यूजिकल एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक रे एंड कोथांतु दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। पूरा वीक रो व्यस्तता परे आजिर दिन ही सांगो मनन को भेटिबार गोटे बड़ एस्केप। सो टाउन रो प्रतिटी चा दुकान हो बा प्रतिटी पार्क सबठी सांगो मनंकर हस रुलार गोटे बढ़िया अड्डा जमी थाए। कोठी पुरुणा स्मृति टिके खोला हुए, कोठी पुरुणा स्मृतिर बही खोला हुए, ता आउ केउठी पूरा माहौल जमी थाए। बस ए खटी गुड़ी को आमो को आउ थरे आमो पुरुणा दिनो गुड़ी को बंचिबा को टाइम दे थाए, एवं आमो मूड को बहुत ही लाइटन करे दे थाए, एंड पूर्णी आउ गोटे वीक रा हसल करबा पाए इंस्पायर करे थाए। सो फ्रेंड्स, जदि आपण भी एमते अछन्ते आपणका सांग माने को गहन रे, ताहले आपणकर खटी को आउ टिके खास बनेबा पई आपण जोडी हि छन्ती आमो सहित, माने आपणकर फेवरेट म्युजिकल एफएम स्टेशन सहित, जा हेउची 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, यह समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहां एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहां बच्चा प्यार, स्वीकार और सुरक्षित महसूस करता है। एक अच्छे माता पिता वो होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्तों को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और न ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं जिसमें दिन के 3 मील में से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ

साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक, जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांटकर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर देगा। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चों से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं, जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करे। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। स्टूडियो होटल समय वर्तमान अपराह 5:02 आरंभ हो रेनबो घड़ी रे कार्यक्रम डायल इन लाइव चिटचैट। फ्रेंड्स, आम लाइफ रो सबुठ बड़ स्ट्रेंथ आमर फैमिली एंड बेले बेले किछि एमती नॉन टॉकिंग फोक थांती माने अकुहा जीव थांती जो माने आम जीवन गोटे अंश पलटी जांती से माने हेले आम घरे थिबा गृहपालित प्राणी सहित आसी जाए गोटे इमोशनल अटैचमेंट एवं आमे मध्य बेले बेले भाबी नौ आम पर सदस्य हिसाब से केते बेले से आम पर सुरक्षा जोगांती केते बेले आम घर को सुरक्षा जोगई थांती तो आउ केते बेले आमे तांकोठु आम नित्य व्यवहार्यर विभिन्न प्रकार जिनिष पाई थाउ। सो बेले बेले केते बेले सेमाने आम जीवन गोटे प्रिय सदस्य पलटी जाती गोटे प्रिय अंश पलटी जाती जना पड़े ना से जीवन काल आम जीवन काल अपेक्षा किसी कम हो जितेबले से माने छाड़ी चली जाती आम को तो बहुत ही दुख ही थाए सते बेले। तो किए से ही प्रिय गृहपालित प्राणी आपण जीवन रे जणई दियंतु आज कॉल जोगे। फ्रेंड्स, कॉल करने डायल करूँ नंबर 0671-230-3153 नंबर टी 0671-230-3153। स्टे ट्यून्ड टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। सो कहू कहू आम सहित जोड़ी ही गले लिसनर भाई भी तो देखी ना किए अच्छे आम सहित लाइन रे। हेलो, गुड आफ्टरनून, के कहउछंती कोठ कहउछंती
1: पापा? नमस्कार, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ। पर प्रथमे कहि दें तो आपनकर नाइन कोठ कहउछंती एंड देन कथा बाबे।
1: आवासन कोठी टाटा स्टील प्लांट रु
0: आवास भाई आपनको हम शो को स्वागत। कोन कहिबे आजर टॉपिक विषय रे आपनकर प्रिय गृहपालित प्राणी विषय रे?
1: देख, आमे जेतु आमे ती एक परिवेश रे आमे भी मानव जीवन देश भितर पशु पक्षी जितक अच्छा ताकर भी आम भल मंद जड़ाश देखा उचित जेहतु आम दिटा बिलई अच्छा गोटे कुकुर अच्छा आ गोटे शुआ शुआ अच्छे मिटु अच्छी आम एम बिलई आम एम पोषा मान जाए आम जो शोबू बिलई से शोब खाइब आम सांगे बस खाइब कि आम अईटा खाइबनी से पाखापाखि।

0: सब चली डायल इन लाइव चिट चाट रामक मिल जाइए नेक्स्ट कलर चलत कथी सहित हेलो गुड आफ्टरनून किए कहते कौ कह
1: दीदी नमस्कार मु साई कोची बेलपड़ा रु
0: साई वेलकम टू द शो एंड केमती कोन चलछी आजर संडे आफ्टरनून
1: हां सेमती भलरे भलरे चलछी
0: आ कोन कहबा आजर टॉपिक विषय रे
1: आमर त माने मु छोटो जे रहतली त से बेलु देखि आसी हम जेजे बहुत भल पांती गाय रखे पई त सेबे थारु गाय अछंती तबरे मु गोटे कुकुर रखिछी आउ सीए माने जत्ते बेले भी आसीबे टिके मोर घर को लेट आवो से पूरा जाई रास्ता रे सेम दे कुरसे गोड़ औदो प्रश्न आसी जाय के
0: तें ना कोन रखछंती निहाते शेयर करबे ना कोन रखछन तारो
1: मु ता ना टिप्पू रखी छी आउ सीए माने तारे मिते अभ्यास होई गलाणी माने जे जो ना आई सवारी से जानी परिवो हे दिन माने एकुरसे गोड़ एमिति होबो मु जानी पर जे आई तार आई सुखे इच्छा होची आमो घर तो जाहा रोसे हुए ताकू सेडा दिया हुए
0: नमस्कार साई बेलपड़ा सब सहित कथ हम सेयर करती शुणिली टीपू सो कौन रही पेट पेट स्टोरी कौन रखी घर से सदस्य सेयर करेंगे एंड केमी कौन सहित चलती से कथा सेयर कर सेयर करने डायल कर दिखाँ नंबर 0671-230-3153 नेक्स्ट कॉलर चलन तो कथा हिजबे तांका सहित हेलो गुड आफ्टरनून के कोचंती कोड कोचंती
2: हेलो
0: हेलो
2: हां दीदी नमस्कार
0: नमस्कार के कोचंती कोड कोचंती
2: ए कंदरपुर पाइसर मु कहौची मनाउची गीतांजलि विश्वाल
0: गीतांजलि भोनी आपन को हम शो को स्वागत कोन कहबे आज रो टॉपिक विषय रे
2: हां मते तो पछु बहुत भलो लागंदी
0: आगे के बे घरे रखी चंती
2: हाँ मुझे रखी
0: जनगणना बुद्धि दीदी जन मत बहुत खुश लगुच थैंक यू सो मच आप कथ बहुत भल लगुच चलती मान रखी घर
2: चोकड़ा आणिक दिए चाउल दिए छुआई दिए एक्सट्रा घर गोटे आति कोल पड़े से दीटा
0: झीजा फैमिली रो गोटे पार्ट पलट थैंक यू सो मच गीतांजलि भोनी आपणकर एते सुंदर मतामत पाई सो ये गीतांजलि भोनी आम सहित शेयर कली अच्छा घरे रखी से छेली जहार ना शुणिले के सुंदर सुंदर ना देखते एंड बेले बेले फ्रेंड्स एम सीना कथा कही पारती कि आम घर जिते रुहती आम से आड़ को एत अट्राक्ट हो जाऊ आम आम मनर कथा कि बेस भलि सेयर कर किसी मिनट चुपचाप बसीगले भी माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाए सो फ्रेंड्स जदि एमती आपणकर भी किसी रही पेट स्टोरी माने आपण भी आपणक घरे रखिछंती एमती किसी अकुहा सदस्य ताहले शेयर कर दिंतु मो सहित किए रही आपणक घरे गृहपालित प्राणी शेयर करबे पई डायल करंतु नंबर 0671-230-3153 सो चलंतु नहीं जी नेक्स्ट कॉल टी सुनिबा के रहिछने आम सहित हेलो गुड आफ्टरनून के कहछंती कोड कहछंती
3: गुड आफ्टरनून मैडम
0: कोन तो
3: मु ब्लाइंड एसोसिएशन रो प्रसन्न कुमार लंका कहूची
0: प्रसन्न भाई आपन को आम शो को वेलकम कोन कहबे आज रो टॉपिक विषय रे
3: आ गया मु गोटे पेटी डॉक्टर ऑफिसली
0: आ गया
3: मु जने ब्लाइंड पर्सन

0: ట్యూన్ కూర్చుంది 100.4 ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో కటక్ తెలిసే దిల్ తాక్. सो चली डायलन लाइव चिट चैट एंड आम सहित कनेक्ट हो नेक्स्ट कॉलर चलतु कथी सहित. हेलो गुड आफ्टरनून किए कह कौट कह
1: मैडम नमस्कार.
0: नमस्कार किए कह
1: संध्यारानी सुतार फ्रम पट्टामुंडी मोटसाई.
0: संध्यारानी भोनी आपण को आम शो को वेलकम. कौन कह आज टॉपिक विषय
1: आज्ञा आप तो बढ़िया टॉपिक रखी दिल से धन्यवाद.
0: थैंक यू.
1: घरे तो समस्ते एटलिस्ट किसी ना किसी पशुपक्षी पालंती गृहपाळित किंतु किसी पशु की पक्षी पाळिनी किंतु मु सबुदिन पारा माने मते पूरा चिन्ह जाइछंती. सकाळ भोर 5:30 होला माने
0: आज्ञा
1: माने पूरा हाँ तांको पई जदी नन नै कि जाइथिन से चली आस्थे आगे उपर.
0: अच्छा आपण कोठी माने तांको तांको किछि खाइबा को दियंती माने भोर उठी
1: सबुदिन दिए खुद हौ रुटी हौ चावल नहीं देवी पानी भी देवी पीबे. आउ गोटे मजेदार कथा हूँ प्रत्येकदिन गुंडुची मूसा घर को आसे खाइबा को दिए.
0: आजिकल तो गुंडुची मूसा कमी गले धीरे धीरे बहुत कमी गले
1: जानी मानते आसो मुझे डाक पाखक आसे पलि खाइबा देवी ना पानी टिके थोदेवी पीब. आउ गोटे इमाजिन बाहर हूँ फिटी फिटी प्रत्येकदिन से मो हजबैंड खाइला बेल आसी खाइबे.
0: अच्छा
1: जेमिति हेले ताको भात दिटा पकाइ दियो.
0: आमे बहुत झिटिपिटी बहुत जण झिटिपिटी को डरंती किन चाहो आपण झिटिपिटी को एंती खाइबा को दुचें एटा गोटे
1: नुवा जिन सब सुनि रहि जाई छी.
0: आज्ञा
1: घरे पूरा टोटल रहि जाई छी माने जेतो बेर खाइबा समय होबे से चले आसियो एगो दिटा पाटे पकाइ दबो से खाइ दे कि माने तम्मे एटि खाउ थाओ किंतु से तो आम पाखे से खाइब मानते मैं बहुत गोटे खुशी लगे देखिए कह आजिकल समस्ते तो घरे घरे पशुपक्षी पाचुंट कि आमर ये जान कि न पोषा हेले भी
0: किसी
1: कथा मानु
0: भोनी गोटे कथा जाने पाखे सुरक्षित फिल कर फिल हो कि आपसी प्रकार क्षति करेंगे ना से आपखे आसिक पहुंचा एंड बहुत खुशी लगे शुणी गोटे बहुत नुआ कथ शुणिली कि झिटिपिटी आसिक
1: मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग रु कॉल लगाउथिली.
0: आज्ञा
1: मजेदार कथाटा कहिली
0: निहति बहुत बहुत थैंक यू. आपण इत्ते सुंदर कथा इत्ते यूनिक कथा हम सते शेयर करले सेति बे आपणको पूरे दिल से थैंक यू.
1: बहुत बहुत थैंक यू जाहु सो को शामिल हेतिबारु नमस्कार रहिली.
0: नमस्कार. सो इथिले संध्याराणी भोनी जेमती कहली कि बहुत गोटे यूनिक कथा मु सुनली गुंडुची मूसा पारा ए सब तो आम नॉर्मली डे टू डे लाइफ रे देखी था आम रखी भी था पाखे कि झिटिपिटी आसिक रहा बहुत जन आम डरी था झिटिपिटी को कि झिटिपिटी पाखक आसबू करवा गोटे बहुत बढ़िया यूनिक कथा थिला. सो एमती जदि किसी मजेदार मेमोरी आपण रही प्रिय गृहपालित प्राणी सहित शेयर कर दिखाँ आज शो डायल इन लाइव चिटचाट डायल करंतु नंबर 0671-230-3153.

देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की, तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदो मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् भारत शासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सद्य एव नीदरलैंड देशस्य यात्रावधौ चोल कालीन ताम्रपट्टिकानां भारताय प्रत्यर्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा उल्लेखितम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमंत्री आतपात आत्मानं संरक्षितुं पारंपरिक पेय पदार्थानां सेवनाय जनान् अध्यर्थयत्। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा ऑन मार्क पोर्टल इति वेब फलकस्य सेवा प्रदातुः सूक्ष्मं निरीक्षणं विधीयते। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलेन निर्णायक चक्रे विजयोधिगतः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सद्य सम्पन्नायाः नीदरलैंड देशस्य यात्रायाः उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् तत्रत्यया शासन संस्थया चोलकालीनाः ताम्रपट्टिकाः भारतदेशाय प्रत्यर्पिताः।

0: आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे श्रीमोदी अवोचत् यत् एतेन विश्वव्यापिनः तमिल समुदायस्य मध्ये विशेषः उत्साहः वर्तते। सः अवदत् यत् एताः पट्टिकाः चोल साम्राज्यस्य सामुद्रिक शक्तिं दक्षिण पूर्व एशिया देशैः सह तेषां सम्बन्धान् च प्रदर्शयन्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत प्रशासनं राष्ट्रस्य अमूल्य रिक्थानां संरक्षणार्थं निरन्तरं प्रयतते। सः प्रोक्तवान् यत् ज्ञान भारतम् अभियानेन छत्तीसगढ़ राज्यस्य मल्हार क्षेत्रे षष्ठ सप्तमयोः शताब्द्योः पाण्डुवंशस्य महर्षेः बलार्जुनस्य सम्बद्धाः दुर्लभाः तिस्रः ताम्रपट्टिका अपि प्राप्ताः।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना देशवासिनः वर्तमाने भीषण ग्रीष्म ऋतौ अत्यधिकं सावधानतां धारयितुं प्रशासनेन प्रदत्तानां निर्देशानां पालनं च कर्तुं प्रार्थिताः। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे सः जनान् पर्याप्त मात्रायां जलपानं कर्तुं तथा सूर्यतापाद् रक्षणोपायान् स्वीकृत्य एव गृहात् बहिर्गन्तुं परामर्शम् अददत्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् ग्रीष्म तापात् रक्षणं प्राप्तुं आमपन्नम्, तक्रम, सत्तुपेयम्, बेलपन्नम्, पानकम्, नीरमोर, सोलकड़ी चेत्यादीनां सेवनं हितकरम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् एते पेय पदार्थाः एक भारत श्रेष्ठ भारत इति भावनां प्रदर्शयन्ति तथा तेषु पूर्वजानां अनुभव निहितः अस्ति।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री रांची नगरे आयोजिताः राष्ट्रीय वरिष्ठ क्रीडा संघ प्रतियोगितायाः अपि चर्चाम् अकरोत्। अस्याम् प्रतियोगितायाम् प्रायः अष्टशताधिक क्रीडकाः भागम् गृहीतवन्तः। श्रीमोदी गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके, तेजस्विन शंकरः, देवमीणा, कुलदीप कुमारः चेत्येतेभ्यः अभिनन्दनम् अयच्छत्। असौ शत मीटर मितायाम् धावन प्रतियोगितायाम् विजेतृभ्याम् गुरिन्दर वीर सिंह तथा अनिमेष कुजूर चेत्येताभ्याम् सह अपि संवादम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तम् यत् खगोलशास्त्रम् देशस्य प्रत्येकम् जनेषु जिज्ञासाम् जनयति। तेनोक्तम् यत् खगोलशास्त्रम् देशे शीघ्रम् लोकप्रियम् भवति। श्रीमोदी युवानः खगोलशास्त्र समूहे सम्मिलितुं तथा अवकाश कालावधौ तारामण्डलं द्रष्टुं प्रेरितवान्। प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशस्य एकस्मिन् कुल्यां गंगा डॉल्फिन प्राणिनः रक्षण सम्बद्धस्य लघु चलच्चित्रस्य अपि उल्लेखं कृतवान्। तेनोक्तं यत् नमामि गंगे अभियानस्य अन्तर्गतं निर्मिता भारतस्य प्रथमा गंगा डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेंस अस्मिन् कार्ये महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। श्रीमोदी अवदत् यत् गंगा डॉल्फिन संरक्षणेन नद्याः जैव विविधतायाः तथा अमूल्यायाः प्राकृतिक धरोहरायाः संरक्षणमपि भवति।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: नूतनः सीडीएस इति प्रमुखः रक्षाध्यक्षः लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणिः अद्य उक्तवान् चिन्तने कर्मणि च नवोन्मेषः सैन्य सामर्थ्यानां विकासं त्वरितं करिष्यति। देशस्य नूतनस्य प्रमुख रक्षाध्यक्षस्य पदं स्वीकृत्य वार्ताहरै सह संवादे जनरल सुब्रमणिः अवदत् यत् सशस्त्र बलानि राष्ट्रहित संरक्षणे निरन्तरं व्यावसायिकं कार्यसञ्चालन सम्बद्धं निर्णायकं च प्रदर्शनं विहितवन्तः। ते भारतस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च रक्षणाय दृढसंकल्पाः सन्ति। अद्य प्रातः नवदिल्लीस्थे साउथ ब्लॉक

जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।

ढलते शाम और चाय का प्याला, कुछ यादें और मौसम निराला। फुर्सत मिले तो कभी इधर आना, साथ बैठकर देखेंगे सूरज ढलने का नजारा। सो हम सूरज ढलने का नजारा तो नहीं दिख सकते एक साथ, पर एक साथ कर सकते हैं ढेर सारे बातें और सुना सकते हैं आपको ढेर सारे यादगार गीतों। फ्रेंड्स आज

ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ ଫଣ୍ଡେ ସୋ ଆପଣଙ୍କ ସଣ୍ଡେକୁ ଆହୁରି ଫନ୍ ଲୋଡେଡ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସୁବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। सो फ्रेंड्स जदि आपणकर रहिछि एमती किछि खास मेसेज खास बर्थडे वाला वे सो जाने परिबे आजर संध्या आसर रे आसर को जमी परिबा आपण चाहिले हमको एसएमएस करि परिबे किंबा हमको करि परिबे व्हाट्सएप। एसएमएस करबा पई जानतु आपनकर एसएमएस बॉक्स को टाइप कर दियंतु एफएमआरसी स्पेस दे लिखि दियंतु आपनकर एसएमएस टी एवं पठी दियंतु नंबर 09495963210 रे एवं जदि चाहु छेंती व्हाट्सएप जरिया रे जानिबा पई हमर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर टी हिउची 8895254200। सो जल्दी जल्दी कर दियंतु एसएमएस किंबा व्हाट्सएप से तबे जे आपनका पाखरे पहुंची दुछि किछि ब्यूटीफुल सा गाना। सो स्टे ट्यून्ड 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କନେକ୍ଟ ଦିଲ୍ସି ଦିଲ୍ ତାକ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମର ରେଗୁଲାର ଲିସନର ଆୱାଜ ସେନ, ରାଜକୁମାର ଭରଦ୍ୱାଜ, ବିମଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁବିହପା, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। टाटा स्टील परिवार तरफ ओडिशावासी को प्यार भरा नमस्कार। आज ऑफिस रे ऑफिस स्टाफ दीपिका रही हैप्पी वाला बर्थडे से बहुत शुभकामना जनईदे निहाती भाव आपण ऑफिस दीपिका मैडम को हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे एंड लिखी दुनिया पाई पदे पापा की मोहब्बत का कोई हिसाब नहीं होता, हर दर्द पे उनके जैसा कोई जवाब नहीं होता, साया बनकर पूरी जिंदगी साथ निभाते हैं, पापा जैसा दुनिया में कोई जनाब नहीं होता, सचमुच पापा जैसा तो कोई भी नहीं होता, हमारे लाइफ में सबसे पहले वाला हीरो होते हैं पापा। सो सबु पापांको पई इटा निहाती भावरी डेडिकेट करि दो छी, जो माने बे हम सहित जोडी छेंते एंड सुन छेंते हमकु देन लिखि छेंते अपा आपनकर उपस्थापना बहुत भल लागु छी, थैंक यू सो मच भाई माने आपन माने जे बे सुनि के लिखि छेंते एंड लिखि छेंते के सबु आरजे मानको वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड टुना भाई, रमेश भाई, उर्मिला अपा, समीर पंडा भाई, मुना भाई एवं विजय भाई को वेरी वेरी गुड इवनिंग जणै छेंते। ताले आपनको मेसेज समस्तंको पाखरे निहाती भावरे पहुंचि जाइतिबो, आपण समस्तंको मध्ये गुड इवनिंग एंड स्टे ट्यून्ड। ପରେ ମେସେଜ ଟି କରିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନନା ନୂଆଗାଁରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲିସନର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରେୟର ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନନା ନୂଆଗାଁରୁ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସୋ ଜାଣିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ହମ୍ ସଫର ସୁଭି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଖାସ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍।

0: ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ ନାଇନ୍ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करनी।

0: करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फी

0: हुसैन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashvani. CBSE deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high-voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
2: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते हैं। जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Iyer, a retired teacher from Goa who worked

வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டியூன் கரிச்சு வந்து அப்படிங்கிற ஃபேவரட் மியூசிக்கல் எஃப்எம் ஸ்டேஷன் 100.4 ஆக்கஸ் பாணி எஃப்எம் ரெயின்போ கடக் தில் சி தில் தாக். சோ வியாச்சி அப்படிங்க சைதா அண்ட் சோ சலிச்சி ஓபிலா ஸ்மிருதி. सो फ्रेंड्स आज आम अबला स्मृति आपखे पहुंचुची से समस्त हृदय सरताज सिंगर के किसी नंबर. सो फ्रेंड्स ये सिंगर ना ही सुनिले मन पूरा शांत हो जाए. हो फ्रेंड्स आम गहन बहुत ही जल्दी छाड़ी चली जाइंट बट छाड़ जाइंट स्वर छाप जहाँकि सबुदिन सब मुहूर्त आम सहित रही. মনে পকাত সেই কলেজ টাইম সবকিছি মুভমেন্ট কু জাবুড়ি ধরলে সে তাঙ্কর মিউজিক রে কলেজ র ক্লাস যা বাটরে হেউ বা ক্লাস রু ফেরিবা বাটরে ইয়ার ফোর

0: ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେ କରି ସୋ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି କନେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗୀତ ଆଜି ପ୍ଲେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ସେ ସରି ସୋ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ସୋ ରେନ୍ବୋ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କୁ ଟିମ୍ କହିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
1: ନମସ୍କାର ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ମହମ୍ମଦ ଜୁବୈର प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है
2: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह विशाल टीके तेजस्वी शंकर देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे गुरिंदर वीर सिंह विशाल टीके तेजस्विनी शंकर देव मीणा और कुलदीप कुमार इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा मिजोरम सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन

0: ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र।
2: नमस्कार, आज अंतिम मुख्य संवाद सह सत्य रंजन महापात्र। ग्रीष्म प्रकोप रक्षा पाइबा लागि सतर्कता अवलम्बन करिबाकु जनसाधारणको प्रधानमन्त्री मोदीको परामर्श। आकाशवाणीर मन की बात कार्यक्रमले ओडिसार बेलपणा एवं आम्बोको कले प्रशंसा। भुवनेश्वर लोकभवनरे दुईदिनिया कुलपति सम्मेलनी 2026 उद्घाटन कले राज्यपाल डॉ हरिबाबू गंभमपटी। भारतीय मूल्यबोधको भित्ति करि विश्वस्तरीय प्रतियोगितामूलक विश्वविद्यालय गठन पई देले आह्वान। राज्यरे सस्ता सुलभ और समावेशी गृह प्रकल्पर संप्रसारण दिगरे कार्य करुछन्ति सरकार। कहिले गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव उषा पाढ़ी। विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा पई 36 चक्र अखडेरा कार्य शेष। कटक सीडीए सेक्टर 6 परिवर्ते 1 जून ठारु गोपालपुर स्थित स्वयंचालित ड्राइविंग परीक्षा केन्द्रे हेब ड्राइविंग परीक्षा। कटक आंचलिक परिवहन कार्यालय पक्षर प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। नुआदिल्लीरे आसंताकाली हेब द्वितीय भारत अस्ट्रेलिया प्रतिरक्षा मंत्रीस्तरीय बैठक। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अस्ट्रेलियार उपप्रधानमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री रिचर्ड मालेस बैठक में सह अध्यक्षता करिवे। भारत प्रजुक्तिद्या क्षेत्र में नेतृत्व नहींपारी कहले विभाग मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट टाइटल हासिल कले भारतीय जोड़ी सात्विक साइराज रांकी रेड्डी और चिराग सेट्टी। एवं आईपीएल क्रिकेट फाइनल रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सम्मुखें 156 रन विजय लक्ष्य रखिला गुजरात टाइटन्स। वर्तमान सुधा मिलिथिबा तथ्य अनुजाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 14 ओवर रु 4 विकेट विनिमय संग्रह करछि 132 रन। आज मुख्य संवाद समाप्त होला। नमस्कार।

सुनी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाळ रे आपण माने सुनी चंदी आपण का साथी स्मृति को कार्यक्रम चली छि भक्ति संगीत र अर्घ्य थाली मतलब महाराणा सेवक मानकर प्रथम काम हेउछि तुंभ करती महाराणा तुंभ पाई निर्दिष्ट आकृति रो काठखंड जोगई देबा परे एहाकु बारिसी रे हाणी साइज करंती ए महाराणा सेवक माने

म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को सुनिछन्ति आपण माने 100.4 फ्रिक्वेन्सी रे पहुंचछु आपण मानक पाखको फ्रिक्वेन्सी बाहर जो माने अछन्ति से माने हमको न्यूज ऑन एआईआर आप लाइव स्ट्रीमिंग रे सुनिछन्ति

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठि केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारि पई उपहार नबाकु आसीथिलि।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये देइ दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहाको 14 वर्ष रे झियो मानंकु पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देइ मु एबे सेठु ही आसीलि।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिसा सरकार।
3: Hey friends, musical yours, Akashvani FM Rainbow Katakua Apanamane, Sunny Chanti, Apananka Sati, Smriti Jodi Jaichi Apanamananka Pakare. And Ta Sati Sati Arambha Yeglani So, Subha Sakala. To Dosto, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां, ये नया दिन की खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। आपके साथ आपकी हम सफर होस्ट स्मृति को आप लोग सुन रहे हैं। तो चलिए सफर का कारनामा शुरू करते हैं और इस सफर को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ।
4: अनजान की फ्लाइट बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं। खूबसूरत होते हैं वो पल जब पलकों में सपने होते हैं। चाहे जितने भी दूर रहे आप, पर अपने तो अपने ही होते हैं ना।

Yes, my friends. Ajra special segment Oscar ka kara chauchi. Bharatiya cinema ra ek amar nama, ek apurva sundarjya, ek salinata abhinay ra parichaya Wahida Rehman ka pai. Hindi cinema ra golden era katha kahile Wahida Rehman ka nama nischay asiba. Tanka abhinay re thila saralata. Au sei saralata re se asadharan aakarshana निज भितरे साउंडी थिले फ्रेंड्स केवल डायलॉग कहु नथिले से आखिर भावना रे मनर कथा कहि दउथिले चलचित्र जगत रे तांकर आरंभ होइथिला दक्षिण भारतीय सिनेमा रो किंतु परे बॉलीवुड रे प्रवेश करी से तांकर एमिति छाप छाडीले जे आजि मध्य सेई युग को गोल्डन एरा बोली कह जाउची प्यासा फिल्म रे तांकर भूमिका लोकंक हृदय को जितिथिला आउ गाइड वर्तमान जोटा मुँ आपणको सुनेली सेथिरे रोजी चरित्र त आजि मध्य भारतीय सिनेमा र सबुठारु शक्तिशाली नारी चरित्र मानक मध्यरे गणा जायथाय एही समय रे एते साहसी स्वाधीन चरित्र को एते सुंदर भापरे पर्दारे आनी परिबा सहज कथा नुह किंतु वाहिदा से चरित्र को पूरा पूरी निक्षुण भापरे गाइड चलचित्र रे देखै आउ वाहिदांक कथा आसिब डांस कथा आसिबनी क्लासिकल नृत्यर अपूर्व अभिव्यक्ति तांकर परफॉर्मेंस को आउरी अधिक मनमुग्धकर करि दउतला तांक हसरे थिला शांति आउ तांक अभिनय रे थिला एक अजणा माया से निज समय रे केवल ग्लैमरस नोह टैलेंट को मध्य समान गुरुत्व दउथिले आउ सेति पई आजि मध्य नुआ पीढ़ीर अनेक अभिनेत्री तांको निजर इंस्पिरेशन बोली मानंती तांकर सिनेमा देखले लागे सतरे अभिनय एक कला आ वाहिदा रहमान से कलार जने सुंदर शिल्पी

फ्रेंड्स आज 88 वर्षरे पदार्पण करिछन्दि वाहिदा रहमान एफएम रेनबो पक्षरु भारतीय सिनेमार एही लेजेंड वाहिदा रहमान को तांकर जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा से सदा सुस्थ रुहंतु खुशरे रुहंतु आउ तांकर काम आगामी पीढ़ी को एभली प्रेरणा दे चलु।

क्या बात है, तीसरी कसम का ये ब्यूटीफुल सा गाना अभी भी जब भी हम लोग सुनते हैं ना, तब भी मतलब जैसे नया सुनने का मन कर रहा है और भी सुनने का मन कर रहा है। क्यों वही था रेवन का कथा यार, एमती गोटे सेगमेंट रहता जवाबी सॉरी वानी गोटे जुगर कथा। सो आज सिलेब स्पेशल बर्थडे स्पेशल रे आज आम सेलिब्रेट कर एफएम रेनबो रे तीनी तीनोटी जो बॉलीवुड रो कलाकार मानक कथा। तबे वर्तमान आम जहां कथा हवा से होंगे बॉलीवुड रो ग्लैमरस कॉन्फिडेंट अभिनेत्री जरीन खान का विषय। वीर फिल्म रो तांकर डेब्यू स्टार्ट हेतिला आ परे निजरा स्टाइल एवं पर्सनालिटी द्वारा से दर्शकक मनरे तांकर गोटे अलग नियारा जगह सृष्टि करथिले। एंड यस फिटनेस जर्नी कथा जरीन खान का कथा उठिबो एवं फिटनेस कथा उठिबनी केमिदि हबो, फिटनेस जर्नी हो कि कॉन्फिडेंस हो, जरीन अनेक युवा पीढ़ी को पाई गोटे मोटिवेशन। तांकर स्क्रीन प्रोजेक्ट सबु बळे स्क्रीन प्रेजेंट सबु बळे थाए एकदम एनर्जेटिक and stylish। अशिवीर फिल्म रो से ब्यूटीफुल ट्रक जोथरे जरीन माशाल्लाह क्या दिखती थी।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आजि एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आजि मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त
0: तारि पई उपहार नबा को आसीथिली।
1: अनेक अभिनंदन,
0: किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्ये दे दियो। एही टीका आमो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आमो सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि दैछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हला कि?
0: ना ना, किछि असुविधा हैनि। तुमे मध्य आजि ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आजि ही www.uvin.mohfw.gov.in

हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ट्यून करिछंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। कहू था दिल से दिल तक।

और जब प्यार होता है पहली बार तब दिल तो पूरा पूरी गार्डन गार्डन हो जाता है. और ये जो पहली प्यार होता है ना, ये कभी भी मन से जाता नहीं है. जब अभी प्रोसेस्ड मीट बा पैकेट मीट रेड मीट ए सब जिनिस जदि आपण न खाउछंती सेटा आपणकर हेल्थ पे भलो जदि आपण बैक पेन भोगुछंती. सो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हेले ही ए प्रकार बैक पेन स्टार्ट हेथाय. सो सेति पई जेतेबेले भी आपण जदि एबेले किछि समस्या भोगुछंती प्रथमे आपणकर लाइफस्टाइल को ठीक करंतु, आपणकर बसिबा पोस्चर को ठीक करंतु. ठीक जेते बहुत समय धरि ऑफिस रे जदि घंटा घंटा धरि बसुछंती गोटे जागा रे ताहाले सेठो टिके उठि वर्क करंतु, टिके बेंड करंतु निज बॉडी को. या द्वारा आपणकर बैक पेन रो समस्या रु आपण मुक्ति पाई परिबे. एंड जदि आपणकर बैक पेन हेइनि ए पर्यंत ताहाले ए भली भाव रे जदि आपण आपणकर डाइट को कंट्रोल करुछंती, माने अत्यधिक लूनो बा चीनी ऑयल फूड ए सब जिनिस को आपण टिके कट आउट करुछंती एंड एक्सरसाइज करुछंती एंड टिके एक्टिविटी माने एक्टिव रहुछंती कहय गले माने फिजिकल एक्टिविटी जा को कहा जाय. तो सेमिति जदि रहुछंती निहाती परे आपण ए सब समस्या रो मुक्ति पाई परिबे. सो स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड ए जीवन को सुंदर भाव रे अनुभव करंतु, एंजॉय करंतु बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट यार. आई डोंट नो. तो सो सबले स्मृति कहिता है प्रेजेंट रे बंचंतु एंड खुशी रहंतु. ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके सो बी पॉजिटिव रो मने पड़ला वर्तमान गोटे सुंदर गीत आसी आपण मानक पाख को. ए पॉजिटिवली ए सुंदर सकाळ को एंजॉय करथांतु, पॉजिटिव थॉट रखंतु एंड ए सुंदर सकाळ को सुंदर भाव रे आरंभ करंतु. यस.

0: यस माय फ्रेंड्स सुन छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक अपनों का साथी स्मृति को आज रही ब्यूटीफुल मॉर्निंग ड्रेस सुन छंदी सो चली छी डायल इन लाइव चिट चैट एंड अपन माने लाइव कथा हो छंदी मो सहित 0671 2303153 ए नंबर रे एंड आज स्मृति पचारु छी अपन मान को जे सेविंग करिया को केते भलो पांती एंड आज जे कौन सब सेविंग करी छंदी कौन उपकृत हे छंदी ता द्वारा देखिवा जने कॉलर आसीगले कि अच्छा फोन टी कटी जाइछि नो प्रॉब्लम आपण माने आउ थरे कनेक्ट हुवन तो हम सहित 0671 2303153 ए नंबर रे तेबे आज अल्प समय पई ही कथा हि परिवार 9:30 रे आपण मानक पई आसी जिवो प्रायोजित कार्यक्रम भारत मसला स्कूल टाइम हेलो
1: पापा नमस्कार
0: नमस्कार अच्छा ठीक है वॉल्यूम कम कर दो तो पूरा इको आसु छी
1: पापा किचन पर कर कोथली सेक्टर 11 सीडीए कटकुल
0: आथरे ठीक ना कहले
1: खितिस
0: अच्छा खितिस भाई वेलकम कर छु खितिस भाई अपन को एफएम रेनबो कटक को केमदि अछंदी
1: धन्यवाद आज्ञा भलो छै
0: अच्छा आज टॉपिक ऊपर कोन कहिबे कोन तो
1: जो रखिले सेविंग विषय रे
0: हाँ।
1: सेविंग आज्ञा एटा को समस्त प्राय आम समाज बाहर शब्द टी नहीं समस्त आज्ञा मनी सेव कर या पचर गोटे भल गुण अच्छी निहित था आज्ञा मित बेता जे ये गुण टे जी थाए समाज आज्ञा आम को कौन क्रिटिसाइज करती लोकटा आज्ञा खोजुस लोकटा आज्ञा मुखीचुस एमती कहते मात्र ये मित बेता गोटे गुण एमती जे ये सब क्षेत्र में आज्ञा देखिए आप समय कहतु टा कहतु किए आम जेको जिन कौन जिनस को नष्ट दिखे किसी सेव करवा आईटा हूँ सबुठ भल गुण ये गुण टा समस्त पाखे देखा रहा उचित रही कौन हम प्रत्येक जिनस इकोनोमिकाली चिंता करवा किमी किसी सेव कर मन कर मुझे गोटे कम कर घंटा लगुच घंटा भितर मुझे आज्ञा दस मिनट सेव कर
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया दिग प्रति ध्यान दृष्टि समय सदुपयोग जोटा कि मानते जो टाइम वेस्ट करवा जमा भी करवा उचित नुह ये बहुत बढ़िया कथा कहले खितिश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज कल कर फटाफट कल आम सहित कनेक्ट हूँ 9:25 अलरेडी मैंने 26 अलरेडी होगी 9:30 मैंने शुणीपरि स्पन्सर प्रोग्राम भारत मसला स्कूल टाइम एफएम रेनबो कटक 0671 2303153 नंबर कल स्मृति
2: हेलो मैम नमस्कार
0: नमस्कार किए कह
2: आज चंचला मैम आसी
0: अच्छा बहुत दिन पर सहित कनेक्ट है
2: नहीं आज भावुची जो बृहस्पति बार तो
0: अच्छा
2: जोगा जोगा
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अरे वाह

हाँ पिला माने मु भारत मसला रो भरत मौसा हेले कार्यक्रम रो आरंभ पूर्वरु तम मानकु मोर पदटिए कहिलो पिले ए खरा पई तम मानकु जेते बेले आगुआ छुट्टी दिया गला तुम विद्यालय रो शिक्षक शिक्षयत्री माने तमकु कोन कहि छुट्टी देथिले अरे ए चुप रहिलो काहे कि कहू न।

हाँ जा हो पिला माने ये तमे तो सब कथा आगुरु बुझी सारी छ ई खरा छुट्टी रे निजो घर को विद्यालय भाभी समय को अपचय न करी केमिति पाठ पढिबो आगु को बढिबो आउ हम भारत मातार ना रखिबो हेले पिला माने सबुठ बड़ खुशी रो कथा।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आज एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारी पई उपहार नबाकु आसीतिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछि असुविधा हैला कि?
0: ना, किछि असुविधा हैनी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw

पहली बार जब महसूस हुआ तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, तब से हर धड़कन में बस तुम्हारा ही नाम लिखा है। क्यों, ऐसा ही होता है ना जब प्यार दिल को छूता है। सुनिश्चित आकाश आकाशवाणी एफएम रेनबो कैटेक 100.4 दिल से दिल तक आपणक साथी स्मृति को आज रही सुंदर सकाळ रे सुनिछंती। समय वर्तमान सकाळ 9:51 बजे 51 मिनिट ऑलरेडी हे गलेनी। सोईठी कहि रखु जो सकाळ 10:00 रु 11:00 आपण मनंकर लव लेटर्स पढिबार टाइम, माने आपण मनंकर अनुरोध रो गीत को प्ले करिबा टाइम, जो माने हमको रिक्वेस्ट ऑलरेडी करि सारिलेनी। बहुत सारा लव लेटर्स वर्तमान मो कंप्यूटर स्क्रीन रे व्हाट्सएप पेज रे, सो आपण मनंकर अनुरोध रो गीत निहाती प्ले करिबी। 10:00 रु 11:00 आम सहित रहिथातु, आमको सुनथातु एमती।

जुड़े हुए हैं, जो कि छत्तीसगढ़, आसाम, ये सब राज्यों से भी हमको सुन रहे हैं और हमसे मिल रहे हैं। सो एफएम रेनबो कटक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे व्हाट्सएप के जरिए आप लोग हमसे मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए। सो बहुत सारा लव लेटर्स अभी मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर है तो चलिए सो शुरू हो चुका है रेनबो एसएमएस का, आप लोगों का, फरमाइशों का, गानों का सफर, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहला एसएमएस हमसे जुड़े हुए हैं अब्बास सेन, रोहित सेन, अमित सेन, दीपक कुमार, राजकुमार भरद्वाज, विमल श्रीवास्तव, मनीष शर्मा टाटा स्टील प्लांट से। सात रंग के सपने आती है तो चल ये गाना सुनना चाहते हैं, लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्मृति मैम, नमस्कार। जय जगन्नाथ। टाटा स्टील परिवार तरफ रू ओडिशा वासी को प्यार भरा नमस्कार। ओके, सो चलिए दोस्तों आपको सुनाते हैं आपकी पसंदीदा ये सुंदर सा गाना।

सुनी छंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छी डायल इन लाइव नुहे रेनबो एसएमएस ओके सो 10:10 ऑलरेडी हे गलानी एफएम रेनबो कटक रे सो नेक्स्ट एसएमएस को पढ़िबा नेक्स्ट व्हाट्सएप को हम सहित कनेक्ट हे छंती मोंटू सर जिगरण पटामुंडे केंद्रापड़ा रु सोमनाथ साहू मोंटू सर जिगरण पट्टामुंडई केन्द्रापड़ा लिखले नमस्कार एंड जय जगन्नाथ टू आवर ऑसम आरजे स्मृति मैम मैम आपणकर एंकरिंग करथिबा मॉर्निंग ट्रांसमिशन रे समस्त प्रोग्राम बेस शिक्षणीय एंड मा एंड मन छुआ हे परिचे सेति पई आपणको सबबळे हृदय रु धन्यवाद एंड शुभ अभिनंदन थैंक यू सो मच सोमनाथ भाई गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस्ड

सो माय फ्रेंड्स, सुन चुकी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। समय वर्तमान सकाळ 10:19 स्मृति को सुन चुकी आज रे सुंदर सकाळ रे मु पढुची आपण मानकर मीठा मीठा लव लेटर्स व्हाट्सएप रे आपण माने पठाई चंदी आपण को अनुरोध रो गीत आम सहित कनेक्ट हे चंदी। रोहित मेहर बुढ़ापाली विजयपुर बरगढ़ रु सुनिया पई चाहि चंदी ओ माई लव फिल्म रो गीत ए जीवन रो बंधन गीत टिको बहुत ही सुंदर गीत रिक्वेस्ट कर चंदी आपण पहुंचुची आपण को पाखो को रोहित मेहर बुढ़ापाली विजयपुर बरगढ़।

ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ 100.4 ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ नारायण प्रधान बी बरमपुर बुगुड़ा गंजाम रो आम सहित कनेक्ट होती व्हाट्सएप रे मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए गीतटी को सुनिया पई चाहिचंती एक दूजे के लिए फिल्म रो

ओके क्या बात है, मतलब इसके बाद भी जो मूवी का रिक्वेस्ट आया है वही एक दूजे के लिए मूवी का ही गाना है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आम सहित कनेक्ट है प्रमोद कुमार साहू, डीह साई कादोपदा जगत सिंहपुर अनुरोध कर गीत टी को।

सो मे फ्रेंड्स सुनिछंती आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाळ 10:33 सो चली छि रेनबो एसएमएस आपण मानंकर अनुरोध रहितर कार्यक्रम स्मृति रही छि आज रे सुंदर सकाळ रे आपण मानंक पाखरे सो देखिबा नेक्स्ट एसएमएस हमको के करिछंती व्हाट्सएप रे आम सहित कनेक्ट हेइ छंती प्रफुल्ल ओके निर्मला बेहरा संतोष बेहरा नातुणी आद्यासा कांतो लाठगढ़ लिखले जय श्री राधे राधे सुंदर उपस्थापना पाए दीदी आपणको अशेष अशेष धन्यवाद आगक आसुची सावित्री व्रत साधव सधवा नारीर शंखा सिंदूर प्रतीक से शुणाप चाहते सती अनुसूया चलचित्र गीत प्रफुल्लकर कंठरे पति पादे मिली मिले पुण्यर सकाळ ए गीतटी को शुणापी चाहते पहुंचुची आपण मनपसंद गीतटी।

हमसे उड़ीसा के बाहर से भी बहुत सारे श्रोता हैं, सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं और हमको मैसेज करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। दत्रेंगी भाटापड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा सुनना चाहते हैं हिना फिल्म का गाना बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया ये गाना। और लिख रहे हैं जय जगन्नाथ जी, प्रिया आरजे स्मृति मैम जी, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम दिल को छू लेता है, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से थैंक यू जी। ओके थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। पहुंच रहा है आपका पसंदीदा ये सुंदर सा गाना आपके पास।

ओके सो समय सर सर जाउची रेनबो एसएमएस शो रे वर्तमान आउ मात्र गोटे दुईटी गीत ही मु प्ले करै परबी आम सहित कनेक्ट हे चंदी उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडी कटक रु लेखले स्मृति अपन नमस्कार सब स्टाफ मानु को नमस्कार सब श्रोता मानु को गुड मॉर्निंग एंड गीत सुनिया पई चाहि चंदी बंदिस फिल्म रो रंग भरे मौसम से किशोर कुमार जी की आवाज में उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडी कटक रु

ये गाना सुन के तो एफएम रेनबो में पूरा एफएम रेनबो भी पूरा रंगीन हो गया है। वैसे तो एफएम रेनबो हमेशा रंगीन रहता है क्योंकि ये टाइटल ही है रेनबो। सुनिश्चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। समय वर्तमान 10:55। वर्तमान रेनबो एसएमएस शो को तो सारिवाकू पड़ो तेब यही गीतर ही शेष करवा। आम सहित कनेक्ट होती कुनी एंड ऐसा पुरुणा साही केउंझर खजूरी जुआणी रू आम सहित कनेक्ट होती लिखले हाय गुड मॉर्निंग मैम हिंदी सॉन्ग प्रेम रतन धन पायो क्या बात है यही गीत शुणा अनुरोध करे पहुंचु सुंदर गीत कुनी आउ ऐसा पाखक शुणु था एफएम रेनबो को एमती एंड स्मृति को यू दियंतु विदाय कारण परवर्ती आज आ किसी समय पर आसी आपण सहित एंटरटेन करेंगे आपण सहित कनेक्ट हो दिन शुभमय हो स्मृति को यू विदाय दिंटू।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून कर छिंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले छे कलाकार हां साथी आमी कथा होतिले भारतीय संगीत जगत रा से कोकिला कंठी चित्रांग विषय रे चित्रांग संगीत जीवन आरंभ मलयालम चलचित्र माध्यम रे होतला तांकर मधुर कंठस्वर शीघ्र ही संगीत निर्देशक मानक मन जीति नैथिला परे से तमिल तेलुगु कन्नड़ हिंदी ओडिया सहित अनेक भाषा मध्य गीत गाइथिले

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछनी 100.4 आकाशवाणी एफएम रे मकटक दिल से दिल तक सो चली छी कलाकार हां साथी चित्रांक कंठस्वर अत्यंत स्पष्ट मृदु और भावपूर्ण से गीतर भाव को अत्यंत सुंदर भावे प्रकाश करि परंती खाली सेति कि नुहे चित्रा केवल जने गायिका नुहंती से जने संस्कृति रो दूत से अनेक समाज सेवा मूलक कार्यर मध्य भाग नेछंती तांकर संगीत लोकमानंकु एकत्र करिवारे सहायक होईछि के चित्रा भारतीय संगीत जगतर एक अमूल्य रत्न तांकर सोमधर कंठ ओ असाधारण प्रतिभा तांकु सदा स्मरणीय करी रखिबो से निज साधना परिश्रम और नम्रता द्वारा सफलतार शिखर को पहुंची चंती

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आज एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारी पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य दे दियो। एही टीका मो झियो मानन को सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानन को पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका दे मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछी असुविधा है नी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

0: नमस्कार सुनीता, केमिति अछ? आउ आज एठी केमिति?
1: नमस्कार दीदी, आज मो झियो को 14 वर्ष पुरिले त तारी पई उपहार नबा को आसीथिली।
0: अनेक अभिनंदन, किंतु एबे उपहार सहित ताको एचपीवी टीका मध्य देई दियो। एही टीका मो झियो मानंकु सर्वाइकल कैंसर रो रक्षा करिथाय एवं आम सरकार एहा को 14 वर्ष रे झियो मानंक पई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे संपूर्ण मागणा करि देइछंती। मो झियो को टीका देई मु एबे सेठु ही आसीली।
1: टीका नबा परे किछ असुविधा हैला कि?
0: ना ना, किछी असुविधा है नी। तुमे मध्य आज ही निज झियो को एचपीवी टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यू विन रे पंजीकरण करिनियो।
1: ठीक अछि दीदी।
2: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानंक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई एचपीवी टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करछंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन मकटक दिल से दिल तक सो चली छी किछि कथा किछि गीत हां साथी समाज और संस्कृति रे मध्य संगीत और स्मृति रा गभीर संपर्क देखा जाय जेमिति कि पर्व पर्वाणी विवाह अन्यान्य अनुष्ठान रे गायथिबा पारंपरिक गीत माने आम संस्कृति रो स्मृति को जीवंत रखी थांती जे गीत गुडी को पीढ़ी रो पीढ़ी को स्मृति रो सेतु गढ़ी थाए आज आमे लोक गीत सुनछे से गुडी को आम पूर्वज माने को जीवन रो एक अनुभव लुचि थाए सतरे साथी स्मृति और संगीत संपर्क केवल व्यक्तिगत नुहे यह सामूहिक मध्य जातीय संगीत किंबा देशभक्ति गीत शुणिले आमर मनरे देशप्रेम और ऐतिहासिक स्मृति जाग्रत हुए एक साधारण सुर समग्र जाति को एकत्र करिपारे स्मृति और संगीत हेउछि जीवनर दुईटि विभिन्न अंश स्मृति बिना जीवन निर्जीव और संगीत बिना जीवन नीरस

लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: अरे कविता भल लगला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो ही मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा तम झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां एहा एपरी एक कैंसर जहाँ को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानक टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराइछंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।

फ्रेंड्स ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय वर्तमान अपराह्न 3:00 बाजि सारिछि समय हे जे आपनकर फेवरेट शो मो देशर साथी जन्मभूमि होछि सेई पवित्र भूमि जेउठारे आमे जन्म नेउछे बढ़िछु ओ जीवनर प्रथम शिक्षा ग्रहण करिछु एही भूमि आम पई केवल माटी नुहे एहा आमर मा समान मा जेपरि निज संतान को स्नेह सुरक्षा ओ आश्रय देइथाय सेहीपरि जन्मभूमि आमको परिचय संस्कृति ओ जीवनर मूल्यबोध मध्य देइथाय सेहीपरि आमे भलपाई कहुना एही जन्मभूमि आम मा

0: अरे कविता भल लागिला जे तमे आयुष्मान आरोग्य मंदिर को सर्वाइकल कैंसर परीक्षा पई आसी छ।
1: दीदी मो झियो हे मते एथि पई प्रोत्साहित कला।
0: अरे बा तमो झियो तो बहुत स्मार्ट। झियो तमको केते वर्ष?
2: मते 14 वर्ष।
0: एबे आपन को निजे झियो को सर्वाइकल कैंसर रक्षा करबा पई टीका दबा को आनिबा को पड़िबो।
1: कोनो कैंसर पई बे टीका अछि?
0: हां एहा एपरि एक कैंसर जहा को HPV वैक्सीन माध्यम रे प्रतिरोध करा जाई परिबो।
1: धन्यवाद दीदी।
0: निश्चय निज झियो को HPV टीका देबा पई वैक्सीन पोर्टल यूविन रे पंजीकरण करबा को भूलिबेनी।
3: भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर रक्षा पाइबा पई 14 वर्षर झियो मानन को टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे मागणा रे उपलब्ध कराई छंती। आज ही www.un.mohfw.gov.in को जाई HPV टीकाकरण पई पंजीकरण करंतु। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।